आधी का ईशा और का किनारा हो या गुख हुई नवा के गुंगा हुआ दिसु के हच इगी असा ना ना हुआ कोमा हकी पाने मा के